0: गिलास तुमको वाफी
1: आई तिरेने नॉन रिसान अलोम बाउल्ला फांतरफा ना विताज ना विताबे आर्ट्स नंगालर से ना वाफ्त वेंतियाज ताऊनी किताब मुबुल्ला पंजाकन आरिट सिन्वार्टा तंड्राजन जहाँ नकनी तंकोलो नुसासनी ममेर नंतंकोलो वनकोलो मकंतन मलगाश अमीदम कोलो वैसिक्ति जहाँ मंगता कनी इल्जे पार्स चिश्ना नंपिया तम्जान फ्तों जान ना इर्रायज ना सिंडिकायू ना पार्टी पॉलिटिकियू ना उल्सुर जो वो बोबिजिंते नुए आह अंगताना तकीना निल्जे पार्स ऐफा स्टारलोर कनेफा ऐला बेजेट स्नायेनो स्नारिया आनाक्रय बनते नुए अंधों पिन रचिरक नंगता जाइवे ओशियांडियन जोन दोपे démilitarisé, dénucléarisé. Si je n'en ai pas besoin de ton zan, car Raïtani s'en a habité tout ou à l'être n'y en a-t-il qu'un, va en passer une fois, SFF, il s'est qu'un fouctan. CEG, il s'est qu'un fraîche. 1250, Zani, SFF Zan, 11 000. 1250, il s'est qu'un fraîche, et CEG. Lycée, 113, il s'est qu'un fivoundouna. Université, il s'est qu'un fartan. École nationale d'informatique, en fait, en dessous. École normale, niveau 3, et tout. INSCAE, et tout. École nationale de la marine marchande, en mazang, c'est crén. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouramanadir, mon vokafa, Gamba, Amzo, en 4 comme Sifdian, en zo, Zalo de Miad Mich, Batsi, Sifdian, en zo, c'est Tira 12, ou en Firenenio. Ratsim Tenia, dia, autrement, non-assistance à pays en danger. Mangata Kamisia, m'talao, un panneau politique ret, titan razan ret, beseka, niftovape, dinamande, renyampisha indal ret, andotsikia, anno, nifam piavan empirenena, natsanga dan CFN, malaza kurunia, sinan notan luvian sao niziu, jerepus notan apunda maïta vatu. Inonoto, andanina vula nifa yo, tsitok zavatra vita. Inona fotsy nametrahana azy ao anatiny lalampanorenana. Inona fotsy nanekena an'izany tao anatiny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina. Zay no ela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo, ndaontsika mbola hiara-hiasa anavotra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny Madagasikara tsy mandohalika Madagasikara sy malagasy nitraka.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.